आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशन

0: के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हे आकाशवाणीचं सांगली केंद्र आहे। सकाळचे 6:05 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम गिरवाण वाणी।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मेनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मेनी से मिले सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरों मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीषा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा

0: निगरानी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खोट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित

0: कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश धोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107107106 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंदू महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बड़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये

0: साथियों, विविधा इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज सुनते हैं प्राध्यापक डॉक्टर सूरज चौगुले द्वारा लिखित वार्ता। वार्ता का विषय है दादाभाई नौरोजी, स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत और राष्ट्रवादी चेतना के प्रेरणा स्रोत।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज चौगुले, वारणा महाविद्यालय ऐतोड़े खुर्द।
2: दादाभाई नौरोजी स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत और राष्ट्रवादी प्रेरणा के प्रेरणा स्रोत, इस विषय को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारत का पितामह तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम वैचारिक शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, वह महान व्यक्तित्व है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। उन्होंने उस समय भारतीय जनता की आवाज को विश्व मंच तक पहुंचाया, जब भारत अंग्रेजी शासन की दासता में जकड़ा हुआ था। उन्होंने न केवल अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का पर्दाफाश किया, बल्कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार भी किया। दादाभाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हुई थी। उनकी माता ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में उनका पालन पोषण किया और शिक्षा दिलाई। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की और बाद में वही गणित एवं प्राकृतिक दर्शन के प्राध्यापक बने। वे उन पहले भारतीयों में से थे जिन्हें किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर बनने का अवसर मिला। दादाभाई नौरोजी केवल राजनीतिक नेता ही नहीं थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने महिला शिक्षा, सामाजिक सुधार तथा आधुनिक विचारधारा के प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई और समाज को प्रगतिशील दिशा प्रदान करने का प्रयास किया। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दादाभाई नौरोजी इसके संस्थापक नेताओं में से एक थे। वे कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। सन 1886 में कोलकाता अधिवेशन, 1893 में लाहौर अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन और 1906 के अधिवेशन में उन्होंने पहली बार स्पष्ट रूप से स्वराज को भारतीयों का लक्ष्य घोषित किया। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मशासन प्राप्त होना चाहिए। उनके इस विचार ने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। दादाभाई नौरोजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने भारत की समस्याओं को इंग्लैंड तक पहुंचाया। वे कई वर्षों तक इंग्लैंड में रहे और वहां भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। सन 1892 में वे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले आशियाई बने। उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम में भारतीय जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। संसद में उन्होंने भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव, आर्थिक शोषण तथा प्रशासनिक अन्याय के विरुद्ध लगातार आवाज उठाई। इनका सबसे प्रसिद्ध योगदान उनका आर्थिक सिद्धांत है, जिसे ड्रेन थ्योरी या धन निकासी सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने अध्ययन करके सिद्ध किया कि अंग्रेज भारत

की संपत्ति को लगातार इंग्लैंड भेज रहे हैं। भारत में उत्पन्न होने वाली आय का बड़ा हिस्सा अंग्रेज अधिकारियों के वेतन, पेंशन, व्यापारिक लाभ और अन्य माध्यमों से ब्रिटेन चला जाता है। उन्होंने बताया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण भारतीयों की अक्षमता नहीं है, बल्कि अंग्रेजी शासन द्वारा किया जा रहा आर्थिक शोषण है। उनकी प्रसिद्ध किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इस सिद्धांत का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध हुई है। दादाभाई नौरोजी ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने भारतीयों को यह समझाया कि उनकी गरीबी और पिछड़ेपन का कारण विदेशी शासन है। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास जगाया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। उनके विचारों से प्रेरित होकर अनेक युवा नेता स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। दादाभाई नौरोजी का प्रभाव भारत के अनेक महान नेताओं पर पड़ा। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तब से नौरोजी से पत्राचार करते थे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक तथा लाला लजपत राय जैसे नेताओं ने भी उनके विचारों से प्रेरणा प्राप्त की। दादाभाई नौरोजी उन प्रथम नेताओं में थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का अंतिम लक्ष्य स्वशासन होना चाहिए। उनका मानना था कि भारतीयों को अपने देश का शासन स्वयं चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। उनके द्वारा प्रस्तुत स्वराज की अवधारणा में आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव को मजबूत किया। यदि हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का अध्ययन करें तो पाएंगे कि दादाभाई नौरोजी ने संघर्ष की वैचारिक भूमि तैयार की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को दिशा दी, अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों का पर्दाफाश किया, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की, कांग्रेस को मजबूत आधार प्रदान किया, स्वराज्य की मांग को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया, ब्रिटिश संसद में भारत की आवाज उठाई। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक लेकिन अत्यंत प्रभावशाली नेता वे सिद्ध होते हैं। 30 जून 1917, दादाभाई नौरोजी का निधन इस समय हुआ। यद्यपि वे स्वतंत्र भारत को देख नहीं पाए, लेकिन उनके विचारों और संघर्षों ने स्वतंत्रता आंदोलन को वह आधार प्रदान किया जिस पर आगे चलकर आजादी की विशाल इमारत खड़ी हुई। आज भी उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत, आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक और स्वतंत्रता आंदोलन का वैचारिक मार्गदर्शक माना जाता है। दादाभाई नौरोजी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचार, एक चेतना और एक आंदोलन थे। उन्होंने भारतवासियों को यह सिखाया कि किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक संघर्ष से नहीं, बल्कि बौद्धिक जागरण, आर्थिक समझ और राष्ट्रीय एकता से प्राप्त होती है। उनका जीवन हमें सत्य, समर्पण, राष्ट्रप्रेम और जनसेवा की प्रेरणा देता है। आज की स्थिति में दादाभाई नौरोजी के विचार कितने प्रासंगिक है यह भी देखना जरूरी है। दादाभाई नौरोजी केवल स्वतंत्रता आंदोलन के नेता नहीं थे, बल्कि वे भारत के पहले ऐसे चिंतक थे जिन्होंने देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने और समझाने का प्रयास किया। उनके विचार आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने ब्रिटिश शासन के समय थे। बदलते समय के साथ परिस्थितियां बदलती है, लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित अनेक सिद्धांत आज भी मार्गदर्शक है। जैसे कि दादाभाई नौरोजी का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत ड्रेन थ्योरी। उन्होंने बताया था कि भारत की संपत्ति विदेशों में जा रही है और इसी कारण देश गरीब होता जा रहा है। आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में यह प्रश्न फिर महत्वपूर्ण होता है कि देश की संपत्ति, संसाधन और पूंजी का उपयोग किसके हित में हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी निवेश, आयात निर्यात और आर्थिक नीतियों के संदर्भ में यह विचार आज भी प्रासंगिक है। साथ ही राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास कैसे किया जाए, इस पर भी सोचना आज महत्वपूर्ण है। नौरोजी हमें सिखाते हैं कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यह विकास का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाए तो वह वास्तविक विकास नहीं है। नौरोजी का मानना था कि शासन जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। वे प्रशासन में पारदर्शिता और न्याय के पक्षधर थे। आज लोकतंत्र में भी भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और जवाबदेही की कमी जैसे प्रश्न सामने आते हैं। ऐसे समय दादाभाई नौरोजी का यह विचार अत्यंत प्रासंगिक है कि सरकार जनता की सेवक है, स्वामी नहीं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, सूचना का अधिकार, पारदर्शी प्रशासन और जनहितकारी नीतियां उनके विचारों की आधुनिक अभिव्यक्ति है। दादाभाई नौरोजी शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी साधन मानते थे। आज भारत ज्ञान आधारित अर्थ

0: अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के निर्माण की आवश्यकता पहले से आज अधिक महसूस की जा रही है। दादा भाई नौरोजी का विश्वास था कि शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकता है। यही विचार आज भी पूर्णतः प्रासंगिक है। नौरोजी यह समस्या का समाधान तथ्यों और तर्कों के आधार पर खोजते हैं। उन्होंने भावनाओं के बजाय आंकड़ों और प्रमाणों के आधार पर ब्रिटिश शासन की आलोचना की। आज जब समाज में अफवाहें, भ्रामक सूचनाएं और अंधविश्वास विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, तब वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशील चिंतन की आवश्यकता बढ़ जाती है। उनका जीवन बताता है कि किसी भी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे का मूल्यांकन तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। वे पारसी समुदाय से थे, लेकिन उन्होंने संपूर्ण भारत को अपना परिवार माना। आज जब समाज जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय आधार पर विभाजन की चुनौतियों का सामना करता है, तब नौरोजी का राष्ट्रीय एकता का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। वे मानते थे कि राष्ट्र की शक्ति उसकी विविधता में निहित है। यह विचार आज के भारत के लिए उतना ही आवश्यक है। दादाभाई नौरोजी ने संवैधानिक और लोकतांत्रिक मार्ग से संघर्ष किया। उन्होंने संवाद, तर्क और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखा। आज लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिक भागीदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों पर आधारित है। उनका जीवन हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान और संरक्षण की प्रेरणा देता है। नौरोजी का मानना था कि शासन की नीतियों का उद्देश्य आम जनता का कल्याण होना चाहिए। आज गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और ग्रामीण शहरी विषमता जैसी समस्याएं मौजूद है। इन चुनौतियों का समाधान सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की नीतियों से ही संभव है। इस दृष्टि से उनके विचार आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायी है। सारांश में मैं कहूंगा कि दादाभाई नौरोजी की प्रासंगिकता केवल इतिहास तक सीमित नहीं है। वे आज भी हमें यह सिखाते हैं कि आर्थिक नीतियां जन कल्याणकारी हो, शासन जवाबदेही और पारदर्शी हो, शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत किया जाए, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की रक्षा की जाए। इसलिए दादाभाई नौरोजी केवल स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के वैचारिक निर्माता के रूप में भी उन्हें याद किया जाना चाहिए। उनके विचार आज के भारत को अधिक न्यायपूर्ण, समतामूलक और लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि दादाभाई नौरोजी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार, एक चेतना और एक आंदोलन थे। उन्होंने भारतवासियों को यह सिखाया कि किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक संघर्ष से नहीं, बल्कि बौद्धिक जागरण, आर्थिक समझ और राष्ट्रीय एकता से प्राप्त होती है। उनका जीवन हमें सत्य, समर्पण, राष्ट्रप्रेम और जनसेवा की प्रेरणा देता है। आइए हम सभी इस महान राष्ट्रनायक को श्रद्धापूर्वक नमन करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प करें। धन्यवाद।
1: साथियों, विविधा इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्राध्यापक डॉक्टर सूरज चौगुले द्वारा लिखित वार्ता। वार्ता का विषय था दादाभाई नौरोजी, स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत और राष्ट्रवादी चेतना के प्रेरणा स्रोत। इसी के साथ आज का हिंदी विविधा कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मुक्सित मुजावर और मुझे महेश विषय को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
0: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
0: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई

0: नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
1: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
0: जी।
1: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है,
0: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने वो लिखते हैं,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, बड़ा खूबसूरत लिखा है।
0: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
1: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
0: जी।
1: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
0: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
0: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
0: इसका उत्तर है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुंबसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी
1: जी। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक

0: नाम क्या है?
1: 8800-4500-559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी?
2: आ, इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा, देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
2: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। न लकड़ी की कमी, न फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
2: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं
0: है?
1: कोई बहाना बना देंगे, ठीक?
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
2: क्या भूल में इधर बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
2: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: हाँ। नहीं नहीं नहीं,
2: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़।
1: अब
2: तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
2: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: Amma, amma.
1: अरे अरे amma. क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा चुप्पा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास.
2: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
0: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा.
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे. अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं. हाँ। और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ. माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा. और वो रोने लगा अम्मा. अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया. वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया.
2: चुपा, चुपा।
1: सोचा, सोचा बेटे, सोचा, डर मत. अरे वो तो सपना था.

0: सो जा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ, है? सो जा बेटा, सो जा, सो जा, शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुपा तो सोएगा, सो जा, सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया, अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये?
1: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है, हा? जा, सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है, अरे सो जा, अच्छा। सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरे यही हट है तो चल, चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।

0: साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी। अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
1: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
2: फिर भी
3: अम्मा तू भी चले वापस?
2: ना हाँ। वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
3: अम्मा क्या सोच रही है?
4: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
1: ये जामुन?
4: हाँ
1: चलो इसी को काट देते।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
1: हाँ।
3: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
4: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
1: अरे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन नहीं मरना पड़े।
4: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
3: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
4: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
1: ये
4: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
1: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
4: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
1: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
4: क्यों?
1: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
3: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
4: हाँ हाँ
1: चलो
4: चलो, चलो। आगे चलकर देखते हैं। चलो।
1: ये देखो,
4: ये
3: पेड़?
4: देख लो
3: अम्मा, अम्मा वो देखो ओक का पेड़। और वही बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
4: चलो, चलो। इधर से निकल कर आओ।
3: अच्छा
4: क्या हुआ चुप्पा?
3: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया।
4: अरे दिखा दो
3: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
1: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
3: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से

0: खुश हो रहे होंगे, है ना?
1: हाँ बेटा, ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार, ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
2: और नुकसान भी क्या है?
1: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे, इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो, हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने, तो कितना नुकसान हो जाए?
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो।
2: ये कौन सा पेड़ है? ना फूल ना फल।
1: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
2: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
1: हाँ।
0: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल।
2: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा, रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
2: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
0: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
2: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हेलो, इसमें हंसने की क्या बात है? चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
2: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
2: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
2: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
1: लेकिन अम्मा,
0: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
1: रहने दे,
2: तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी, तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
2: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
2: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
0: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोलना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का।
1: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।

0: हॅलो
1: हॅलो हा बोला की हॅलो आपकी पसंद या कार्यक्रमात स्वागत आहे आपलं बोला.
0: हा मी डोरली तालुका जत होऊन भीमा कुंभार बोलतोय.
1: हा बोला की
0: प्यासा सावन या चित्रपटातले गीत
1: ऐकूया की पाऊस कसा पडतोय आपल्याकडे.
0: पाऊस अजून पडलेला नाही, जून महिना संपत आला तरी सुद्धा अजून पावसाची पाऊस कसलाच पडलेला नाही, म्हणून या गीताद्वारे आपल्याला एक संदेश ठेवायचा परमेश्वराला की मेघारे मेघारे या गाण्यातून संदेश ठेवून आपल्याला पाऊस पाडण्याची गरज आहे. पावसाची आवश्यकता जास्त आहे अजून कसलाच पाहिजे.
1: नक्की नक्की पाऊस पडेल.
0: आपण कोण बोलता मॅडम?
1: मी समृद्धी कुलकर्णी बोलतीये.
0: ओके मॅडम, आवाज छान आहे तुमचा मॅडम.
1: थँक्यू.
0: आणि माझे मित्र आहेत त्यांचे नाव बोलतो.
1: हा घ्या की
0: आशिष आत्मा मौला कलाम आणि चांद मुजावर घालगाव.
1: हा
0: सतीश कोथमेरी राधानगरी.
1: हा
0: अतुल गौतमी धम्मदिना अरुण काळे येडी कांबळे मौजे येळगुर. राहुल भांडिसे तमनूर तालुका हातकणंगडी जिल्हा कोल्हापूर. दत्ता चौगुले बेनोडे आणि राजविलास पाटील सुरेखा गोरड आमच्या या श्रोत्यांना.
1: नक्की या सगळ्यांसोबत तुमच्या आवडीचं हे गीत नक्की ऐकूया.
0: ओके मॅडम धन्यवाद.
1: धन्यवाद. हॅलो
2: हॅलो
1: हॅलो
2: नमस्कार.
1: धीरज
2: जबारी बात कर रहा हूँ. तहसील जिला पाटन गुजरात से. आज हमें गाना सुनना है.
1: हाँ कौन सा गाना सुनना है?
2: बारिश के ऋतु मान लो के शुरू हो गई है.
1: हाँ?
2: तो मेघारे मेघारे फिल्म का नाम है प्यासा सावन. हम जो अभी बारिश के ऋतु में जो पानी बहता है उसमें हम कूड़ा कचरा मत डाले, क्योंकि उसमें से गंदगी फैलाने की भी शक्यता है और कई जगह पानी का अटकाव के वजह से पानी का जल भराव भी हो सकता है. तो जितना हो सके इतना कोई भी कूड़ा कचरा डाले नहीं, और कोई डाले तो उनको मना करना चाहिए.
1: बहुत अच्छी सोच है ये.
2: ये आप लोगों से प्रेरणा मिलती है हमें
1: जी.
2: और दूसरी बात, हम हो सके इतना पानी का जल संग्रह करें ताकि जब पानी की दिक्कत पड़ती है तब वो पानी काम में लगे,
1: काम में ला सकता है.
2: हाँ दीदी
1: जी, बहुत अच्छी सोच है.
2: जी जी जी. और हमें एक प्लेटफॉर्म आप लोग देते हैं आकाशवाणी का, जो फोन इन का जरिए में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी बात जो हम बोल पाते हैं तो वो आकाशवाणी का श्रेय जाता है, क्योंकि आकाशवाणी एक अच्छा माध्यम है जहाँ लाखों लोग ये कार्यक्रम सुनते हैं.
1: जी जी. हाँ
2: जी जी. और नाम ले सकते हो थोड़ा बहुत?
1: हाँ बोलिए.
2: हमारे आकाशवाणी फोन इन एक ग्रुप है, उसमें गौतम राय बोले जी, तुकाराम जाधव जी, गंगाधर जी, लोकेंद्र वर्मा जी और पूरा भारत छोटा ये कार्यक्रम सुनेंगे, वो सभी को डेलीगेट देंगे, आप भी ये सुनेंगे कार्यक्रम.
1: जी इन सबके साथ आपके पसंदीदा ये गीत सुनते हैं. फोन करने के लिए धन्यवाद.
2: धन्यवाद.

श्रोताओं, राजभाषा का प्रचार एवं प्रसार की भूमिका में हम आकाशवाणी सांगली की ओर से प्रयास कर रहे हैं। लीजिए सुनिए आज का शब्द, पहले अंग्रेजी में, बाद में उसका पर्यायवाची शब्द हिंदी में। शब्द है डेलिग्नेशन। हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधि मंडल, प्रत्याय योजना। आज की सूक्ति, शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद। सकाळचे 11:40 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत भाव वधारा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 85वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि

बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कधी व्हायचे नाहीत. आता त्याची संख्या जोरात वाढते. हे जे बदलते जागतिक पातळीवर जाते. देश पातळी झाली की आता कुठेतरी जंगल तोड झाली किंवा तिथं जास्त पाऊस पडला, पूर आला, हे स्थानिक पातळीवर झालेले. आता हे स्थानिक पातळी जरी आपण म्हटलं तर गेल्या वर्षी 25 साली आणि 23 साली युरोपासह मोठे पूर आले. 25 साली 1/3 पाकिस्तान पाण्याखालीच होता. सिंधू नदीला पूर आले. ह्या धोक्याचे संदेश आहेत ते आपण बघत नाही. पूर आला की तेवढ्यापर्यंत फोटो आले, काही 2 ट्रक धान्य पाठवलं, आपलं काम संपलं. पण हे कायम राहणारे हे येतात संकेत, ते आपण दुर्लक्षित केले तर नुकसान कायमच आहे.
1: श्रोते हो परिसर या कार्यक्रमात आत्ताच आपण हवामान बदलाची जाणीव कशी झाली याविषयी डॉक्टर जय सामंत यांनी सांगितलेली माहिती ऐकली. या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते प्रवीण चिपळूणकर. ही आकाशवाणी कोल्हापूर केंद्राची निर्मिती होती. परिसर. परिसर कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून प्रसारित करण्यात आला. यानंतर ठीक 2:15 दिल्ली केंद्रावरून दिलं जाणारं दोपहर समाचार हे हिंदीतलं बातमीपत्र आम्ही आता संक्षेपित करीत आहोत.
2: नमस्कार. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी. हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली. सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी. सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया. दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी. शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा. एक रिपोर्ट.
3: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी. ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं. ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं. साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है. इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे. समाचार कक्ष से वैष्णवी.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं. यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया से नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की. उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की. बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही. इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की. दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई. साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया. यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया. यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री

0: मंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगी। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरामतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के M नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से NCP नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से AIADMK विधायक MR विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले AIADMK विधायकों की संख्या बढ़

0: साथ हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनॉग्रेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनॉग्रेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा के उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव यौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड

0: के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ऍप सहित 558 kHz वर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 आणि 2 सेकंद झालेले आहेत। नादब्रह्म अंतर्गत शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम आपण ऐकणार आहोत। या कार्यक्रमात आज विजयशंकर चॅटर्जी यांचं इसराज वादन आपण ऐकणार आहोत, राग गौड सारंग आणि धून। त्यांना तबल्याची साथ विश्वनाथ मिश्रा यांनी केली आहे। नादब्रह्मांतर्गत शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमात ऐकूया विजयशंकर चॅटर्जी यांचं इसराज वादन, राग गौड सारंग आणि धून।

तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक

0: महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था। शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
1: हाँ,
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
2: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
1: खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं।

0: इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
1: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है?
0: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
1: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए।
0: हाँ, आपका यह प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से यह शिकायत नहीं होनी चाहिए।
1: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है, केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
0: हाँ हाँ, सही है।
2: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है। लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
0: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
3: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
2: हाँ, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
0: अब के कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
2: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
4: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
2: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थी। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोड़ शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
1: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
2: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता। मगर ये सब बुर्द

0: فروش ہیں.
1: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था. लोगों ने खूब वाह वाह की. अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया. उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था. मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा.
2: प्रिय बंधुवर नमस्कार. आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है. मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह ना होगा. हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ. इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी. मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए.
1: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे. निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा. चेहरा फक हो गया. झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
0: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी वकील का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था. ये तू कहां से उठा लाया? शैतान जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था.
3: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा.
4: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले.
3: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला.
4: वाह वाह वाह वाह, यहां भी चलते हुए.
0: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं. अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए.
4: बेटा परमानंद, जरा यहां तो आना. सुनो, तुमने ये कागज कहां पाया?
2: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे. मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं.
0: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था. तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
2: मुझे मेज पर नहीं मिला.
0: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूं, तुम भी याद करोगे.
3: अरे भाई ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो.
4: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं.
3: मिल तो गया था पर बस एक आंच की कसर रह गई.
4: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है.
1: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए. यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा. बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे. इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी. मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया. गोली मार देने का काम किया है. उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे,
3: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा.
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं? मुझे यही आश्चर्य है. लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ?
4: मक्कार का मुंह काला.
3: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है. बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलाई खुल ही गई. बस एक आंच की कसर रह गई.
6: एक आंच की कसर. मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी आपने सुनी कथा सुधा में. इस कहानी

भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
1: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं एक गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे
0: जी।

0: हूँ। तो मंजरी जी, सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए।
1: भाई बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है
0: जी।
1: और विशेष रूप से युवा और युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी, क्लब, रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है। और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखा

थकावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है, तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू या अन्य नशीली पदार्थों का वो सेवन करते हैं और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है और ये जो लत है वो बड़ी नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी बढ़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाते हैं, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली, और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए, लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन हो, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनके जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित कर रही हैं, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है, तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ है, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे, अगर वो देखते हैं तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं उससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो किरदार में आपको क्यों ढलना है?

0: और ना जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है। आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर में आप अगर आप रह रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए, विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
1: तो कुछ अच्छी चीजों का हम क्योंकि किसी भी

0: साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए, विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी की, संगीत के साथ आप कर सकते हैं या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं, बस उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद भी होगा। हमारे साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है, इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: छोड़ना फिर भी आसान है लेकिन छोड़े रहना छोड़ा मुश्किल है, तो वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उसे दिली बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है, स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है, चर्चा के इंतजार में, इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुनाई ही दी है,
1: ये सब तो हमने सुनी है, लेकिन गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन की बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी।
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है, इस गीत से भी संदेश मिलता है। और देखो जब विवाह जो है वो बंधन नहीं रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आत्य और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए।
1: वाकई मंजीत जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी वो आदतें हैं। एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके हैं वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो ही अच्छा है। और दोनों को पहल करनी पड़ती है रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी नेहा एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाए, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई जो है वो कैद नहीं है बल्कि एक ऐसी साझेदारी जहां दोनों का समान होता है, समान अधिकार है और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए।
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि किसी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना जरूरी है और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बना हुआ जरदारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्हें तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है। और वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल, और हमारे साथी लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं बल्कि रिश्तों को समझने, संजो और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते।

0: खासकर कन्या, वो लोग शादी कर लेती है ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती, समय लगता है, रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती है। अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये नहीं समझती कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, ये बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हो या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दे। लड़के के लिए नया होता है दामाद बनना और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है, ये लड़कियों के लिए भी नया होता है। ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार हमारे नियमों के अनुसार रहे, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है, तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
1: तो
0: घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है,
1: और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नए रिश्तों को समझे, आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए, नहीं

0: तो ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें नहीं हो जाती हैं, लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही
1: बिल्कुल है। और बस खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है उसे तहे दिल से निभा पाती, पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वैद्य पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया।
0: और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए। शादी के बाद वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बनेगा आपके ऊपर।
0: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे या ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए, हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सबने उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें, और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
1: मूल मंत्र है।
0: विवाह को अच्छी तरह बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
1: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
0: खाना तो बनाएंगे, गाना कब सुनाएंगे?
1: तो चलो पहले गाना सुना देते।
0: बिल्कुल।

0: तो देखो बनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए।
1: चलो फिर बना देते हैं दाल की कचौड़ी। इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हो और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से। और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए। और तलने के लिए तेल और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार और वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गर्म करिए, इसमें हींग जीरा सौंफ धनिया और बेसन डालकर भूने, इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो है वो मिर्च लाल मिर्च गरम मसाला अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मन बड़ा नमक भूल गए है ना। और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, इस दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के साथ।
0: हम रेसिपी बताएंगे पर एक बात ये है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जो आईबीपी है उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
1: हाँ, लेकिन जिसको नमक जिसको फीकी लगेगी वो ये क्या बना दे।
0: आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग 1/2 छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना 1/2 छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं। और नमक आपके स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे, सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा, हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग जीरा सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए और इसमें कटी हुई हरी मिर्च अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है, फिर हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दे। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं, हरा धनिया डालें। गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है, कचौड़ियां तो बन ही चुकी हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आप दोनों ये सारी चीजें खाइए। और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: तो कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार। Thank you.

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो आईबीएस के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारी जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारे अगर हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं, कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले लिया तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज लास्ट रिसोर्ट, अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था आईबीएस उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द, एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहां मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से हमारी आवाज निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाए, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ईएनटी को जाके देखते हैं, ये गला खराब है। ईएनटी जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहां से खाने की पाइप शुरू होती है वहां पे काफी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला खराब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज की चली है तो एक गाना है।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के जमाने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयां निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के जमाने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन की दवाइयां लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं, और एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीजन हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयां हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने जमाने में ये दवाई नहीं होती थी तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के जमाने में अल्सर

0: सर्जरी इज ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
1: जी जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
0: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
1: जी जी,
0: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
1: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
0: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट डे मोशन होता है। चूंकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूं कल रात को, ठीक से सोया हूं कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट डे मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूं अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: ओके, तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई है, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी, तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही
0: से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया?
0: तो एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्द दिल दर्द जिगर, ये गाना
1: क्या बात है, आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: जाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जिसमें मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, दवाई नहीं देनी है हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा के साथ, एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपकी कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइज जो बोलते हैं।

0: साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है, तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
1: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
0: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
1: जी।
0: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, हमारे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
1: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। पर अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
1: जी जी। और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
0: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ सकता है।
1: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के, क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
0: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है, इसके लिए पूछना पड़ता है पेशेंट को क्यों नहीं पच रहा है। बोलते हैं हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती है, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाए, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।
0: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना

डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी

0: यदि को थोड़ी असावधानी हो या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से या आपने उसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है और ये अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी।
1: तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते हैं जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है, अभी काफी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे भी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट एंड राइट देख लिया एक सेकंड के, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप की प्रेशर मेजर करती है, क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है तो बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं हो एसिड रिफ्लक्स, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 hour pH pH probe बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, घी क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतरी में कुछ इशू है, अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको IBD बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर IBD की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
0: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
1: शायद मेरी शादी का ख्याल
0: सुनते हैं डॉक्टर साहब, ये गाना।

0: case, irritable bowel syndrome, acid reflux disease.
1: Mm-hmm.
0: The third very important pillar of any GI problem is education.
1: Mm-hmm.
0: कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए. तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है. तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया. ये क्या समस्या है?
0: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है. बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन आल्सो गोज अवे. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं. तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है. तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट लिए, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला. ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है.
1: जी, जी.
0: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो.
1: Okay.
0: माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नोजिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक्स. माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा. नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी. अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स. इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है.
1: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने कहा
0: तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स.
1: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है. तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
0: अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिंस कैन कॉज एसिडिटी. तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है, तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ.
1: जी जी जी. और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
0: बिल्कुल
1: तो,
0: बिल्कुल.
1: या फिर जो लोग नहीं लेते उन्हें भी होता है तो? हाँ,
0: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है. दोनों सेम चीज करते हैं. अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है. अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है. एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है. तो ओनली वे हम अल्कोहल कर पाते हैं कि अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के हिस्ट्री के ऊपर. तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए. वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स. तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान, टबैको, सेम चीज. धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है. अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड. अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है, और दोनों बीमारियां पड़ रही है. ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है. तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल.
1: जी जी. डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए?

0: रही
1: तेरी पसंद
0: आऊंगा।
2: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर एसिडिटी जो पेट संबंधी की जो बीमारियां हैं बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता।
3: तो ये जितनी भी ये बीमारियां आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है कि प्रोटीन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं कितना प्रोटीन खाना चाहिए कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी स्पेशली फैटी लिवर आई।

0: श्रोताओं को।
1: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीकोरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा देखते हैं, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेलियर तो हम जानते ही होता है, ये कॉमन है। वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज है वो काफी रेयर होती है। लास्ट चीज मैं कहूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। कभी लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां है, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
0: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या?
1: बिल्कुल हो सकती है। कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खाके, तला हुआ खाके, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपके गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
0: जी जी, और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
1: नहीं, जरा भी नहीं। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
0: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या? ये
1: बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट हैं जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले। अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ, एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
0: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी या तो, कुछ नहीं?
1: नहीं नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
0: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
1: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज ऐसा सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है। इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
0: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
1: चले चलो, ये गाना सुना है, चले चलो,
0: चले चलो लगान का,
1: लगान का,
0: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्या है।
1: तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बार। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जाए ये तेल अच्छा है, ये ले लो इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जिसमें रेगुलेटेड दवाई है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासिटामोल 500 ml पैरासिटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है।
0: और
1: स्टेरॉइड भी आता है, और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वालो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो भी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट, इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड।
0: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत

0: सकता पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: था।
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।

0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल
1: समारोह में एयर मार्शल तरुण चौधरी लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष्णेय लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू

कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने शौर्य पुरस्कारान् प्रायच्छत्। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला आदय पुरस्कृता। हरियाणा राजस्थान मध्ये दशक त्रयेभ्य विलंबिताया यमुना जल विभाजन विवाद से अद्य समाधानम जातम। सर्वोच्च न्यायालयेन राम मंदिर दान प्रकरणस्य कथित वित्तीय अनियमिततायाः न्यायालय निरीक्षण अन्वेषणस्य द्वारा याचिका निराकृता। सीबीएसई इत्यनेन सांप्रतिकाय दशम वर्गाय त्रिभाषा नीतिः नानिवार्येति घोषिता। सर्वकारः व्यापारस्य सुगमतां प्रावर्धयितुं परिष्कार सूचना तंत्रं प्रवर्तयति। एसआईआर इति स्वस्तना देहल्यां समारप्स्यते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकांतः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान्।

0: कृषि और किसान, पशु और धान, नई तकनीक का ज्ञान, कृषि समस्याओं का समाधान,
1: ये

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे

0: राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।

0: महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधे उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत MSME क्षेत्र है। MSME न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हम भारत विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में MSME क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूले। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और MSME क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो है ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो MSME की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट MSMEs हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ MSMEs के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की

0: सपना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
1: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार, जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है, यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता, कहीं 30 करता, कहीं 90 स्टाफ काम करता है, इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए
1: जी।
0: देखिए एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर पे कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो है वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धन राशि चाहिए होती है तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो है वो कोलेटरल मांगते हैं
1: जी।
0: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने दी
1: है
0: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें देनी थी और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
1: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता
0: है। दो बातें मैं और बताना चाहूंगा, पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10,00,000 रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटी हम लोग देते हैं, इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं
1: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
3: नमस्कार जी, प्रियंका जी और निशेषिका जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है, देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो बराट कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो

0: बताए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी।
2: तो आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है और ये हमारे एक्ट के तहत, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
2: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है।

0: लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है, और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं, और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहां तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करते हैं जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉर्पोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
0: देखिए जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे GFR के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या MSMEs की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
1: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: जी मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है MSME की जो लोन लेने का तो कितने परसेंट में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
0: देखिए जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, RBI की गाइडलाइंस है, बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफी कम रहती है। एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8-10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं, और सबसे पहले आपको

0: अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं अगर आप प्रोसेसिंग में हैं तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा
1: जी। मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
2: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान
1: जी।
2: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू।
0: राशिद जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये 3 श्रेणियां हैं एमएसएमई में और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस है। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगा कि ये डेफिनेशन एमएसएमई की हमने पिछले साल रिवाइज की थी और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया। और इसका पर्पज ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमई इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट एमएसएमई के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा
1: जी। हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
3: मैम मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं।
0: देखिए आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूंगा, शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस वजह से?
0: जी मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 एमएसएमई हमारे साथ पंजीकृत थे और ऐसे बहुत से एमएसएमई थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि एमएसएमई जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है और काफी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सो डेफिनेटली इट इज थ्रू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आप

0: उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए जीरो स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है तो वो एसएमए वन स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया तो वो एसएमए टू स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता है।
1: और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफी मजबूत रही है, और उसका एक रीजन ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है
1: जी,
0: वो भी काफी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो है वो क्लीन चले। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं तो उसमें आपको सहायता दी जाती है।
1: हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
2: जी मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: और जो एक्सपर्ट साहब हैं उनको भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नए और इनमें जो लोग काम करते हैं तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेज एमएसएमई में कितनी निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए, किसके जो मजदूर काम करते हैं एमएसएमई और वेलफेयर स्कीम कैसे होती है?
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है तो मिनिमम वेजेस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती है। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनके अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग कि एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं 20 लोग हैं तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो है वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशन की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछे।
3: जो लघु उद्योग बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं, अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफी संख्या इसकी बढ़ी है, 1 करोड़ 65 लाख से अब 8 करोड़ 70 लाख से ऊपर हुए हैं, और हमारे एम एस

0: चीज जो है वो लार्जर कॉर्पोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया, अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है।
1: जी, जी।
0: और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1800-1806-7-63 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी,
2: हेलो
1: जी। हाँ, आपने सवाल पूछे।
2: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी।
2: हेलो
1: जी, हम सुन पा रहे हैं जल्दी से सवाल।
2: एक्चुअली हमारा ना बुटीक है
1: जी,
2: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है?
0: बिल्कुल, आपको लोन मिल सकता है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है। और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप MSME में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था, ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है, जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है, इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकता है।
1: जाते जाते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में

0: 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था, ढाई साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं, 17 लाख लोगों को 15,000 रुपए का टूल किट प्राप्त हो चुका है, 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी,
1: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।